नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए

0: घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the Economic Advisory Council discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. The Home Minister also directed an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with a ruthless approach. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar virtually handed over 72 health facilities.

शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग और सभी का स्वागत है 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना पर। आपका दोस्त आरजे अंकित हाजिर है कार्यक्रम लेके सुहानी सुबह। दोस्तों, एक घंटे का कार्यक्रम में रहने वाला हूं 8 बजे तक आपके साथ। और इस कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, लाया हूं ढेर सारे सुपर हिट ओल्ड बॉलीवुड ट्रैक्स। लेकिन सिर्फ गाने ही नहीं, सिर्फ गीत ही नहीं, इन गीत के साथ साथ दोस्तों आपके लिए है कुछ करंट इवेंट्स, कुछ रोचक जानकारियां, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड जानकारियां, साथ ही है आज का इतिहास, और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए वेदर फोरकास्ट यानी मौसम का हाल भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम, इस पहले गीत के साथ आप लोग भी।

आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके कार्यक्रम के शुरू में कहा था कि आपको बताऊंगा कुछ करेंट इवेंट से जानकारी, तो चलिए शुरू करता हूं। सीबीएसई उत्तर पुस्तिका पुनर्मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि 7 तक बढ़ी। सीबीएसई ने शुक्रवार को 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 7 जून मध्य रात्रि कर दी है। पहले यह समय सीमा 6 जून मध्य रात्रि थी। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कई छात्रों ने 2 जून को शुरू किए गए सीबीएसई के एक पोर्टल पर उत्तर पुस्तिकाओं को देखने तथा सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने में आ रही समस्याओं को उठाया था। माता वैष्णो देवी का भव्य पूजन। चंदनगर के कुंदलपाड़ा स्थित विनोद तल्ला में माता वैष्णो देवी का पूजन श्रद्धा एवं भक्ति के साथ बड़े धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस धार्मिक आयोजन शास्त्री संघ बालक समिति द्वारा किया जाता है। पूजन के दौरान भजन, कीर्तन, आरती और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं में माता के दरबार में उपस्थित होकर पूजा अर्चना की तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। विशेष रूप से महिलाओं की सहभागिता उल्लेखनीय रही, जिन्होंने भजन, कीर्तन और आरती में उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे क्षेत्र में भक्ति में वातावरण बन गया है। श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के जयकारों के साथ आयोजन एक सफल बनाया। और साइंस सिटी ने सीयू के नेचर क्लब के सहयोग से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 मनाया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के नेचर क्लब के साथ मिलकर साइंस सिटी कोलकाता के मिनी ऑडिटोरियम में विश्व पर्यावरण दिवस 2026

फिल्म जंगली से दोस्तों आप सुन रहे थे। ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने और बोल से सवारा था हसरत जयपुरी ने।

साइंस सिटी कोलकाता के डायरेक्टर प्रमोद गोवर्ड के कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आशुतोष घोष ने दो वॉकुल पौधे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बॉटनी के प्रोफेसर कृष्णेंदु आचार्य की अध्यक्षता में एक संवाद सत्र आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विदुषी मनाली बोस, अनिल चटर्जी और श्रीजानी बनर्जी ने संगीत में प्रस्तुति भी दी। तो दोस्तों ये तो थी कुछ जानकारियां, अभी बढ़ेंगे अगले गीत की तरफ। लेकिन अगले गीत से पहले दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक भी लेना जरूरी है, तो ब्रेक के बाद आपको सीधे लिए चलूंगा अगले गीत की तरफ, और अगले गीत के बाद आपको बताऊंगा मैं खेल से जुड़ी कुछ जानकारी। तो बने रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सुना पे आपके दोस्त आरजे अंकित के साथ।

फिल्म कश्मीर की कली से दोस्तों मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत उपेन अय्यर का संगीत और एसएच बिहारी के थे बोल। आइए दोस्तों अब खेल से जुड़ी कुछ जानकारी आपसे शेयर करूं मैं। इस बार रिकॉर्ड 8,335 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि और वो किसमें, वो है फीफा विश्व कप में। जी हाँ दोस्तों, फीफा विश्व कप केवल फुटबॉल का सबसे बड़ा महाकुंभ नहीं बल्कि ये खेल जगत की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति भी है। दशकों के सफर में इस टूर्नामेंट के इनामी राशि में हुआ इजाफा फुटबॉल के वैश्विक विस्तार और इसके पहले व्यावसायिक महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। 1930 में पहली बार फुटबॉल के इस महाकुंभ का आयोजन हुआ था लेकिन फीफा की ओर से पहली बार ऑफिशियल पुरस्कार देने की परंपरा 1982 में शुरू की गई। कुल पुरस्कार महज $20 मिलियन था जिसमें विजेता टीम को 2.2 मिलियन डॉलर मिलते थे लेकिन 44 वर्षों में इसमें कई गुना बढ़ोतरी हुआ और इस बार 48 टीमों वाली विश्व कप में $871 मिलियन पुरस्कार दिए जाएंगे। भारतीय रुपए की बात करें तो ये 8,335 करोड़ रुपए हुआ। फीफा विश्व कप 2026 की इनामी राशि इतनी बड़ी है कि सिर्फ क्वालिफाई करके हिस्सा लेने वाली हर टीम को कम से कम $10.5 मिलियन मिलेंगे, करीब 100 करोड़ रुपए।

यानी अगर कोई टीम ग्रुप चरण में सभी मैच हार कर भी बाहर हो जाए तब भी वो लगभग 90 करोड़ लेकर घर जाएगी। और 8 वर्ष बाद भारत की भिड़ंत अफगानिस्तान से। भारत का पिछले कुछ समय से घरेलू टेस्ट मैचों में निराशाजनक प्रदर्शन रहा, लेकिन उसकी टीम अब भी बेहद मजबूत है और वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC के महत्वपूर्ण मैचों में पहले अफगानिस्तान के खिलाफ शनिवार से यहां शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच में उचित संयोजन तैयार करने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाला ये मैच WTC का हिस्सा नहीं है, लेकिन टीम की दिशा तय करने के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है। इन दोनों टीम के बीच इससे पहले

जो बदलाव के दौर से गुजर रही है और अभी तक उचित संयोजन तैयार करने के लिए संघर्ष कर रही है। तो दोस्तों ये तो थी खेल से जुड़ी कुछ जानकारी। अभी बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ और अगले गीत के बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आज के इतिहास से जुड़ी कुछ जानकारी। तो बने रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पे आरजे अंकित के साथ।

अनामिका से लता मंगेशकर की मधुर आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत आर डी बर्मन का संगीत मजरू के बोल। आइए दोस्तों अब 7 जून की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ करते हैं रुख। चलिए शुरू करता हूँ 1539 में बक्सर के निकट चौसा की लड़ाई में अफगान शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था। 1671 की बात करें 1631 की बात करें दोस्तों तो मुगल बादशाह शाहजहां की बीवी मुमताज बेगम की बुरहानपुर में 39 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। 1893 में महात्मा

ने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। 1989 में भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया। 1995 में नॉर्मन थैगार्ड अंतरिक्ष कक्षा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने। 1998 में स्पेन के कार्लोस मोया ने फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीता था। लेकिन दोस्तों अभी और भी है मेरे पास साथ जिनकी महत्वपूर्ण घटनाएं, अगले गीत के बाद आपसे साझा करूंगा उन घटनाओं के बारे में। तो बने रहिए 100.1 FM गोल्ड, खरा सुना प्यार जंकित के साथ।

तीन देवियां से मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत श्री बर्मन का संगीत मजरू के बोल। हाय दोस्तों, वापस से करता हूं शेयर आपको कुछ आज के इतिहास से रिलेटेड कुछ जानकारी। 1999 में श्रीलंका में प्रचलित आवर्जन नियम निरस्त हुआ था। 2004 में इसराइल मंत्रिमंडल ने गाजर क्षेत्र से बस्तियां हटाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। 2006 में भारत द्वारा नेपाल को आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 1 अरब रुपए देने का निर्णय लिया गया। 2007

अंत में अमेरिकी ने सऊदी अरब के राजदूत रहे प्रिंस बादर बिन सुल्तान के हथियारों की दलाली में करोड़ों पाउंड के घोटाले का खुलासा किया और 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोई गैस पर लगने वाले 4% वैट को पूरी तरह से समाप्त घोषित किया था। दोस्तों बढ़ेंगे अगले ट्रैक की तरफ और अगले गीत के बाद आपको बताऊंगा 7 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्मों के बारे में, तो बने रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पे आपके दोस्त अर्जन अंकित के साथ।

जोशीला से दोस्तों किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, एस डी वर्मन का संगीत और शहीद लुधियानवी के बोल। आइए दोस्तों अब आपको बताऊं 7 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। 1998 में सुमित अंतिल भारत के भाला फेंक पैरा एथलीट थे, है उनका जन्म हुआ था। 1974 में महेश भूपति भारत के टेनिस खिलाड़ी, उनका जन्म हुआ था। 1914 में ख्वाजा अहमद अब्बास प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक थे, उनका जन्म हुआ था। और 1909 में वर्जीनिया एबगर अमेरिकी प्रस्तुति एनेस्थेटिक थी, उनका हुआ था जन्म। दोस्तों अभी अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे, अगले गीत का तो आपको बताऊंगा 7 जून को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो चुका है 7:33, आपका दोस्त आरजे अंकित आपके साथ और कार्यक्रम चल रहा है सुहानी सुबह आपके अपने चैनल पर यानी 100.1 FM गोल्ड खरा सुना पर। आरजे अंकित रहेगा 8 बजे तक आपके साथ और सुना रहा हूँ बैक टू बैक कुछ सुपर हिट ओल्ड बॉलीवुड ट्रैक्स आप लोगों के लिए।

हिमालय की गोद में से दोस्तों आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में एक बहुत ही प्यारा संगीत, कंपोजिशन कल्याण जी आनंद जी की, लिरिसिस्ट आनंद बख्शी। चलिए दोस्तों अब आपको बताता हूँ 7 जून को हुए प्रसिद्ध व्यक्ति के निधन के बारे में। 2011 में नटराज रामकृष्ण भारत के एक नित्य गुरु थे, उनका हुआ था निधन। 2002 में बीडी जति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, उनका निधन हुआ था। और 1954 में एलन ट्यूरिंग, अंग्रेज गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, उनका भी निधन हुआ था। चलिए दोस्तों अब एक बहुत प्यारे से गीत की तरफ आपको ले चल रहा हूँ, और गीत के बाद आपको बताऊंगा मैं मौसम का हाल यानी वेदर फोरकास्ट आप लोगों के लिए। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सुना पे आपके दोस्त आरजे अंकित के साथ।

फिल्म धरती कहे पुकार के दोस्तों, उस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के थे बोल। आइए दोस्तों, अब आपको बताता हूँ मैं मौसम से जुड़ी खबर, यानी वेदर फोरकास्ट। पहले बता देता हूँ आपको पिछले 24 घंटों के बारे में। तो पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान था 34.6 डिग्री सेल्सियस, जो कि सामान्य से 0.6 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान था 27.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि सामान्य से 0.3 डिग्री ज़्यादा था। अधिकतम अपेक्षित आर्द्रता थी 92% और न्यूनतम अपेक्षित आर्द्रता थी 63%। वर्षा दोस्तों 2.2 मिलीमीटर हुई थी। आने वाले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भी संभावना है और गर्जन तर्जन के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। और मछुआरों के लिए भी एक जरूरी सूचना है, अगले 6 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कभी कभी तेज हवाएं चलने और 60 किलोमीटर तक प्रति घंटे तक के झोंके आने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे अगले 6 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों के समुद्र में ना जाएं। आइए बढ़ते हैं एक और प्यारे से गीत की तरफ, लता मंगेशकर की आवाज में।

धरती का ये पुकार कैसे दोस्तों आप सुन रहे थे, माफ करिएगा दोस्तों, लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म घर से, आरडी बर्मन का संगीत, गुलजार के थे बोल। और दोस्तों देखते ही देखते हम पहुंच चुके हमारे कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर, आइए सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा संगीत मुकेश की आवाज में।

फिल्म कभी कभी से दोस्तों आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। ये गीत खयाम का संगीत और सही ने सजाया था बोल से। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ। आखिरी गीत होगा सुमन कल्याणपुर की आवाज में आप लोगों के लिए।

बात एक रात की। दोस्तों आप सुन रहे थे इस मूवी से एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज में, संगीत से सजाया था एस जी बर्मन ने और बोल से सवारा था मजरू ने।

तो दोस्तों अब वक्त हो गया है कि मैं आप लोगों से ले लूं इजाजत थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा इसी चैनल पर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद लेकर ठीक 11:10 पर। और अगला कार्यक्रम होगा थोड़ी देर में आप लोगों के लिए एफएम गोल्ड पर, तब कहीं मत जाइए, बने रहिए 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना पर, क्योंकि आने वाले हैं ढेर सारे कार्यक्रम बैक टू बैक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए निकलता हूँ स्टूडियो से, मिलने वाला हूँ बहुत ही जल्द आप लोगों से।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने

0: दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
1: Collaborate closely to maintain security.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: Full potential of our time.
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
4: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फिलिस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के

0: के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
1: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी।

0: अखबारों ने खेल जगत की तीन महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says, India will be significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record 6th time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. More from our correspondent.
3: Home Minister directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with the ruthless approach. He said that ensuring financial discipline in the border districts is the responsibility of the states. Mr. Shah directed that collectors and GST officials be trained and that the Central Board of Direct Taxes, CBDT, conduct a survey on currency. Home Minister said that camps must be organized to train people living along the border to tackle the threats of narcotics and firearms and instructed that the presence of patwari sentinels, local police and PSF personnel be ensured in these camps.
4: For Akashbani News, Shuman Bhattacharji, Agartala.
2: The National Testing Agency or NTA has refuted the claims circulating on social media and messaging platforms regarding an alleged leak, advance access or sale of the NEET UG 2026 re-examination question paper. In a social media post, NTA said that such content is the work of organized cheating rackets that prey on the anxiety of students and their families. A report.
5: The agency asserted that the integrity of the examination process remains fully intact and that all necessary safeguards are in place to ensure a fair and secure examination for candidates. NTA said it is actively identifying and reporting the offending channels, accounts and content to the concerned platforms and to cybercrime authorities for immediate takedown and action. The agency has advised candidates and parents not to engage, pay or forward any such message and not to fall prey to the fraudulent solicitations. The agency has also urged all aspirants to ignore

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने वर्ष 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच चुके हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन गतिविधियों के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में वर्ष 2044 तक हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। अमरीकी सेना ने होर्मूज जलडमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा माने जाने वाले 2 ईरानी ड्रोनों को रोककर नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान ने बताया कि अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब

0: one before missing out on a maiden test century. In SAF Women's Championship 2026 final, India defeated the defending champions Bangladesh 3-1 to win the title for a record sixth time. The match was played in Madgaon, Goa yesterday. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के 2 ड्रोन नष्ट किए। रूस के अधिकारियों ने सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेन के ड्रोन हमले को अप्रत्याशित बताया। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं।
2: Collaborate closely to maintain security.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अमेरिका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा माने जाने वाले ईरान के 2 ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका की सैन्य कमान ने बताया है कि अमेरिकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान की ड्रोन गतिविधि की खबरों के बाद अमरीकी बलों के केशम द्वीप और गोरख में ईरानी रडार और निगरानी स्थलों को निशाना बनाने के कुछ घंटों बाद हुए। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच शांति के लिए प्रयास करने के उद्देश्य से पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी कल ईरान पहुंचे। हाल के हफ्तों में ये उनकी ईरान की तीसरी यात्रा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रूस के अधिकारियों ने यूक्रेन में सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर हमले को अप्रत्याशित बताया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए। एक रिपोर्ट।
5: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान

0: स्थान है।
1: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा का भी कार्यक्रम है। इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फिलिस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। इसराइल की सेना के प्रवक्ता ने बताया कि सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन उन्होंने नागरिकों के मारे जाने के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। अमेरिका में कल रात ओहियो में टोलेडो में सामुदायिक गली महोत्सव के पास कई लोगों को गोली मार दी गई। संदिग्धों की तलाश जारी है। स्थानीय पुलिस को ओल्ड वेस्टर्न फेस्टिवल के पास गोलीबारी की सूचना मिली। सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। 7 साल बाद भारतीय महिला टीम ने एक बार फिर ट्रॉफी अपने नाम की। एक रिपोर्ट।
3: खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
2: फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेवियो काबुली आमने सामने होंगे। रूस की मीरा एंड्रीवा ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। कल फाइनल में 19 साल की एंड्रीवा पोलैंड की माया चवस को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से हराया। इस उपलब्धि के साथ ही एंड्रीवा फ्रेंच ओपन जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले 1992 में 18 साल की मोनिका सेलिस ने यह खिताब अपने नाम किया था। उलान बतार ओपन 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने भार वर्ग में कल स्वर्ण पदक जीते। इस प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 6 और पदक अपने नाम किए। 21 वर्षीय सागर जगलान ने फ्रीस्टाइल 74 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में तामिर मुखबंद को 15-4 से हराया। वहीं 22 वर्षीय जयदीप ने मुखबंद को पराजित किया और तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर उसके जीत हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया। महिला कुश्ती में अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में 18 साल की काजल ने फाइनल में नाइजीरिया की अफ्रीकी चैंपियन दामला उजा को 8-0 से हराकर 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुकी पहलवान प्रिया मलिक ने इसी वर्ग में मंगोलिया की तुवशिन जारगल ताराव को 8-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। जापान के काकामिगारा में भारत के अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के 2 ड्रोन नष्ट किए। रूस के अधिकारियों ने सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन के ड्रोन हमले को अप्रत्याशित बताया। फुटबॉल में

प्रदेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला फ्लोवियो कोबोली से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी TDP ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। TDP के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और TDP सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोनों को रोककर नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान ने बताया कि अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रूस की मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल में 19 साल

गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सभी का स्वागत है 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना पर। आपका दोस्त आरजे अंकित है हाजिर कार्यक्रम लेके। लो आ गई उनकी याद। स्टूडियो के घड़ी बज चुके हैं सुबह के 11:10 दोस्तों, और मैं रहने वाला हूं लो आ गई उनकी याद में आप लोगों के साथ 12 बजे तक। जब भी आते हैं लाते हैं एक विषय, करते हैं उसी विषय पर बात, सुनाते हैं उसी विषय पर गीत आप लोगों के लिए। और आज का विषय बताने में थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको, क्योंकि मैं बताऊंगा आज का टॉपिक इस पहले ट्रैक के बाद। तो चलिए सुनते हैं पहला गीत, पहला ट्रैक, और शुरू करते हैं आज का एक कार्यक्रम इस गीत के साथ।

दोस्तों आप सुन रहे थे फिल्म भाई भाई से। ये गीत गीता रॉय की आवाज में संगीत से सजाया था मदन मोहन ने, बोल से सवारा था राजेंद्र किशन ने। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पहले गीत के बाद आपको बताऊंगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं या किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड अभिनेत्री श्यामा के बारे में।

फिल्म शर्त से गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे गीत हेमंत कुमार का संगीत एसएच बिहारी की बोल। श्यामा भारती हैं सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक थी। सन 1950 के दशक की मशहूर अभिनेत्री श्यामा का नाम सुनते ही आज भी उस दौर के हिंदी सिनेमा के चाहने वाले के जहन में एक बेहद खूबसूरत चुलबुली और बेहतरीन अभिनेत्री का चेहरा

कौन उठता है। लेकिन ज्यादातर लोग शायद ही इस बात से परिचित होंगे कि अभिनेत्री बनने से पहले श्यामा करीब 50 फिल्मों में बाल और अतिरिक्त कलाकार के तौर पर छोटे मोटे रोल कर चुकी थी।

फिल्म शारदा से बेबी सुरैया की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। नौशाद ने सजाया था संगीत से और डीएन मधुक ने सवारा था बोल से। अभिनेत्री श्यामा का जन्म 7 जून सन 1935 को लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। उनका वास्तविक नाम खुर्शीद अख्तर था। उनके अब्बा फलों के कारोबारी थे। श्यामा महज 2 साल की थी जब उनके अब्बा कारोबार के सिलसिले में लाहौर छोड़कर परिवार के साथ मुंबई चले आए थे। 9 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। एक मुलाकात के दौरान श्यामा ने बताया था कि फिल्में उन्हें आकर्षित तो कर दी थी, लेकिन उस जमाने की सामाजिक सोच को देखते हुए फिल्मों में काम करने की बात वह सोच भी नहीं सकती थी। इसके बावजूद उनका इस क्षेत्र में आना महज इत्तेफाक ही था, जिसे लेकर घर में और खासतौर से अब्बा की तरफ से थोड़ा बहुत विरोध भी हुआ था, लेकिन वह विरोध ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। श्यामा का बड़ा बेटा फारूख मिस्त्री विज्ञापन जगत का मशहूर कैमरामैन है, तो छोटा बेटा इंग्लैंड में रहता है।

फिल्म जबक से लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे कि चित्रगुप्ता का संगीत और प्रेम धवन के थे बोल। आइए दोस्तों बात करते हैं उनके करियर के बारे में। श्यामा ने 1946 में रिलीज हुई घूंघट, नईम और निशाना जैसे कुछ शुरुआती फिल्मों में खुर्शीद जूनियर और बेबी खुर्शीद के नाम से काम किया, लेकिन चूंकि उस जमाने में इसी नाम की एक बहुत बड़ी स्टार पहले से फिल्मों में काम कर रही थी, इसलिए उन्हें अपना नाम बदलकर बेबी श्यामा रख लेना पड़ा। अगले 6 सालों में श्यामा ने बीते दिन, मीराबाई, मेहंदी, परवाना, रामबाण, अनमोल मोती, बेगुना, चार दिन, जागृति, जल तरंग, जीत, नाच, नमूना, पतंगा, सावन भादो, शबनम, शायर, आहूति, नीली, सबक, सरताज, वफा, नजराना, सजा, तराना जैसी करीब 50 फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए और फिर साल 1952 में बनी फिल्म श्रीमती जी में वह पहली बार अभिनेत्री के तौर पर नजर आईं।

फिल्म दो बहन से दोस्तों आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। ये ट्रैक वसंत देसाई का था, संगीत। 11:32 हो चुके हैं दोस्तों, अंकित आपके साथ और कार्यक्रम चल रहा है लो आ गई उनकी याद, आपकी अपने चैनल पर यानी 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना पर। और आज दोस्तों लो आ गई उनकी याद में मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड एक्ट्रेस श्यामा के बारे में, दे रहे उनको श्रद्धांजलि दोस्तों आज के हमारे इस कार्यक्रम में।

बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गए उनकी याद, लो आ गए उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गए उनकी याद, लो आ गए उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

अपना घर से मुकेश और गीता दत्त की आवाज में ये गीत रवि का संगीत प्रेम धवन के थे बोल। श्यामा के मुताबिक उन्होंने कभी भी अपने करियर को प्लान नहीं किया, जो भी अच्छे रोल उन्हें मिलते रहे वह उन्हें निभाती चली गई। 1957 में रिलीज हुई कुल 11 फिल्मों में से 7 में वह नायिका थी और बाकी 4 में सहनायिका और चरित्र अभिनेत्री। फिल्म शारदा में उन्होंने अपनी हम उम्र मीना कुमारी की मां की भूमिका निभाने से भी परहेज नहीं किया। उस भूमिका के लिए श्यामा को 1957 का सर्वश्रेष्ठ सहनायिका का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था।

छोटी बहन से दोस्तों आशा भोसले और मना दे की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक शंकर जयकिशन का संगीत हर्षद जयपुरी के थे बोल। ६९ से अगले तीन दशकों के दौरान श्यामा ने दुनिया झुकती है, बहू रानी, गुमराह, जी चाहता है, जानवर, दिल दिया, दर्द लिया, आग, मिलन, बालक, मस्ताना, सावन भादो, गोमती के किनारे, प्रभात, नया दिन नई रात, चैताली, खेल खेल में, जिनी और जॉनी, खेल खिलाड़ी का हकदार, मोहब्बत, मेरा कर्म मेरा धर्म और प्यासे नैना जैसे कुल 60 फिल्मों में काम किया। उनका कहना था कि बढ़ती उम्र के साथ साथ स्टैमिना खत्म होने लगा था, मैं बहुत जल्दी थकने लगी थी। इससे पहले कि लोग कहते श्यामा से अब काम नहीं होता, मुझे रिटायर हो जाना बेहतर लगा। 1989 में रिलीज हुई जेपी दत्ता की फिल्म हथियार मेरी आखिरी फिल्म साबित हुई।

फिल्म तराना से दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत, संगीत से सजाया था अनिल बिश्वास ने और बोल से सवारा था प्रेम दफन ने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

आप सुन रहे हैं सुरीली नगमों की सौगात, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद।

दो बैक टू बैक गीत आप सुन रहे थे दोस्तों। पहले आपने सुना फिल्म छूमंतर से और अभी आप सुन रहे थे आर पार से ये गीत। आइए दोस्तों, देखते देखते हम पहुंच चुके हमारे कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर। आइए बढ़ते हैं एक और प्यारे से गीत की तरफ।

0: फिल्म दिल नादान से दोस्तों आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में। यह गीत गुलाम मोहम्मद का संगीत शकील बदायूनी के थे बोल। बढ़ेंगे कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाजत। मिलूंगा फिर आप लोगों से मैं कुछ दिनों बाद। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अ वेरी हैप्पी संडे। सुनते रहिए साथ रहिए 100.1 FM गोल्ड। खरा सुना
1: कहूंगा, एक बार नहीं हजार बार कहूंगा, तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो।
2: क्या चुराया है मैंने तुम्हारा? बोलो क्या चुराया है?
3: मेरा दिल।
2: क्या?

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हट तेरा

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा

0: कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वे राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लंच तक 6 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 126 रन और ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार लंच तक क्रीज पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today said that the Joint Commission

0: तो मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फिनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक नीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6ठे ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हो गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे करने का उत्सव मनाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत में सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हुर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई तथा 1996 में सिद्दीकी शमी के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नरवुट्टम से सिनेमा जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। भारत ने कल गोवा के मंडगांव में खेले गए फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। उधर न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट के आज दूसरे दिन 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 3 विकेट खोकर 82 रन बना लिए हैं। और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में पूरे देश में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. India-Indonesia Joint Commission meeting concluded in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. In a social media post, Dr. Jaishankar said, "The comprehensive strategic partnership between both nations has witnessed a strong growth in recent years." He said the substantive discussions were held on political, defence and security, maritime and shipping, trade, fintech, health, pharmaceuticals, fertilizer, critical minerals, as well as tourism, education and cultural cooperation. Both leaders also exchanged perspectives on regional developments, advancing our multilateral coordination and deepening India-ASEAN ties. Earlier, in his opening remarks, Dr. Jaishankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. He said India-Indonesia celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year. Today is the last day to submit applications for verification of issues observed and re-evaluation of answers on the post-result services portal for Class 12 examination. In a social media post, the Central Board of Secondary Education said that the portal will remain open until midnight. It asked the students to complete and submit their applications before the deadline. The foreign portfolio investors offloaded Indian equities worth 42,927 crore rupees in the first week of June, remaining net sellers across all five trading sessions during the week. With this, the total FPI outflows from the equity market have crossed 2.67 lakh crore rupees so far this year, according to depository data. The continued selling by foreign investors is largely attributed to ongoing tensions in West Asia, which have now reached the 100-day mark, as the United States and Iran have yet to reach a peace agreement despite multiple rounds of negotiations. In West Bengal, four bodies of a family have been recovered from Teesta River near Rambhi of Kalimpong district after 48-hour search operation this

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हो गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुग्यानो ने की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और अधिक प्रगाढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, पोत परिवहन, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण और उर्वरक जैसी द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्ष के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए। उन्होंने जिला अधिकारियों तथा वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा के बारे में सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपये है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन आज पूरे हो गए। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए। इससे पहले शनिवार को ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्ची में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से पहचान बनाई। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: हंड्रेड पॉइंट वन एफएम गोल्ड पर चाय और क्लासिक्स 5:20 और 16 सेकंड। बादलों का है मौसम, जब बादल चुपके चुपके धरती से मिलने आते हैं बारिश की बूंदों में जैसे कितने नगमे गुनगुनाते हैं। खिड़की पर ठहरी ठंडी हवा कुछ राज सुनाने लगती है और हाथों में चाय की प्याली दिल को बहलाने लगती है। कहीं दूर पुराने गीतों की मीठी सी धुन जब बजती है भीगे शाम की तन्हाई भी जैसे हौले से सजती है। हाँ, लता की आवाज हो या किशोर की कोई कहानी, बारिश, चाय और मेलेडी बस यही है शाम सुहानी। गरम चाय की हर चुस्की में यादों का मौसम पलता है, किसी भूले चेहरे का किस्सा मन में धीरे धीरे से चलता है ना। बारिश की रिमझिम ताल मिले जब मधुर सुरों के साथ, जैसे थाम ले कोई आकर थका हुआ दिल का हाथ। न कोई शोर हो न जल्दी, बस मौसम का है अफसाना, एक प्याली चाय, कुछ प्यारी धुने और बारिश का तराना। जिंदगी की भागती राहों में ऐसे पल बहुत कम मिलते हैं, मिल पाते हैं जहां चाय, बारिश और हो धुन, दिल को कर दे बिल्कुल गदगद। और साथ में हो कुछ धुन जिसकी बात हम कर रहे थे। कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स, आप हैं संचिता के साथ और शुरू करेंगे ऐसे ही एक धुन के साथ, आशा भोसले। आरडी बर्मन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया, फिल्म का नाम है गर्दिश और आप जिस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं वो है चाय एंड क्लासिक्स। 5:22

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।
1: 100.1 FM गोल पर चाय और क्लासिक्स 5:26 और 6 सेकंड आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ। और एक खुशखबरी के साथ हम शुरू करेंगे इस कार्यक्रम को। प्रज्ञानंद ने फाइनल राउंड में विंसेंट कीमर को हराकर नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीत लिया है। जी हां, आर प्रज्ञानंद की बात कर रही हूं। भारतीय ग्रैंड मास्टर ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदियों के मजबूत समूह को पछाड़ते हुए ये महत्वपूर्ण जीत हासिल की और प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। ये जीत प्रज्ञानंद के करियर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है और वैश्विक शतरंज मंच पर भारत की बढ़ती उपस्थिति को और भी मजबूत करती है। हंड्रेड पॉइंट वन FM गोल्ड खरासोना के अंतर्गत कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स। इस कार्यक्रम को आप प्रसार भारती न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे एक और धुन के साथ। शबीर कुमार और लता मंगेशकर की है आवाज। फिल्म का नाम बेताब। आनंद बख्शी ने गीत के बोल लिखे और आर डी बर्मन ने इसे संगीतबद्ध किया।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।

चाय क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर। और अब हाँ, बादल यूं गरजता है, डर तो लगेगा ही, क्योंकि पश्चिम बंगाल के कई जिलों में रेड अलर्ट दिए गए हैं। तो सभी से ये अनुरोध है कि आप घर के अंदर रहे, सुरक्षित रहे। और एक गुड न्यूज यानी कि खुशखबरी ये है, कोलकाता भारत का 18वां शहर बनने जा रहा है जहां वाटर मेट्रो सेवा उपलब्ध होने वाली है। जी हाँ, ये आपने सही सुना। आप जानते हैं कि वाटर मेट्रो सेवा शुरू होने वाली है। केंद्रीय जहाज मंत्रालय के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने इस घोषणा की कि कोची जो कि 17वां शहर था, उसके बाद केंद्र ने अब कोलकाता की वाटर मेट्रो परियोजना के लिए नीतिगत मंजूरी दे दी है। और ये प्रणाली हुगली नदी के पार एक तेज पर्यावरण के अनुकूल और वैकल्पिक सार्वजनिक संपर्क प्रदान करेगी। कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स, आप सुन रहे हैं गीतों और साथ में कुछ बातें भी, जो है बहुत दिलचस्प। और साथ में बारिश का मौसम है, तो चलिए सुनते हैं एक बारिश से ही जुड़ा हुआ गीत। बीवी और मकान है फिल्म का नाम, हेमंत कुमार की आवाज। गुलजार के बोल को हेमंत कुमार ने ही संगीतबद्ध किया।

0: सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी, वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: खरासोना के अंतर्गत कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स। चलिए बातों ही बातों में एक अलर्ट है, एक चेतावनी है। तेज आंधी तूफान, बिजली गिरने, भारी बारिश और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की संभावना है, जिससे 7 जून यानी कि आज शाम 5:25 से लेकर शुरू होकर आगामी 2-3 घंटों के दौरान पश्चिम मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर और झारग्राम के जिलों के कुछ हिस्सों पर ये जो है असर दिखाएगी। सभी से अनुरोध है कि वो घरों के अंदर जो है सुरक्षित रहे। कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स। जी हाँ, चाय और क्लासिक्स में हम बात कर रहे थे तरह तरह विषयों को लेकर। फिलहाल जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको मिलाना है किसी से और इनका नाम है डॉक्टर दादी। कौन है ये डॉक्टर दादी? जी हाँ, 1948 की बात है और 70,000 से अधिक बच्चों को मुफ्त में डिलीवरी यानी कि जन्म दिया है। उज्जैन के माहिदपुर में जन्मी डॉक्टर भक्ति यादव महिला शिक्षा की अग्रगणी बनी। 1948 की बात है। उन्होंने इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज में पहली महिला डॉक्टर के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जो अपने पूरे बैच में एकमात्र महिला रही। अब इतने सालों पहले डॉक्टर की पढ़ाई में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम होती थी। स्नातक होने के बाद आकर्षक सरकारी प्रस्ताव मिलने के बावजूद उन्होंने सभी को ठुकरा दिया। उन्होंने एक निस्वार्थ मार्ग चुना, अपना जीवन गरीब मिल श्रमिकों और वंचित महिलाओं के इलाज के लिए समर्पित कर दिया, जो अस्पताल में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं जो है ले नहीं पाती थी। अपने अविस्मरणीय 68 साल के करियर में उन्होंने 70,000 से अधिक बच्चों को सफलतापूर्वक जन्म दिया, उनके गरीब मरीजों का पूरी तरह से मुफ्त इलाज किया और अपनी हृदय स्पर्शी और अथक चिकित्सा सेवा के लिए दूसरों के से केवल एक का मामूली जो है शुल्क लिया। उन्होंने 91 वर्ष की आयु तक रोगियों की सेवा की। उनकी असाधारण सेवा के लिए उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2017 में गौर रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिससे एक ऐसी विरासत बनी जो पूरे भारत में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर दादी की। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। वर्षा ऋतु पर ही आधारित है और पंकज उदास की आवाज है। तो चलिए, कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स, आप जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में संचिता के साथ। 5:43 और

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: हंड्रेड पॉइंट वन एफ एम गोल्ड पर चाय और क्लासिक्स इस कार्यक्रम में आप जुड़े हुए हैं संजता के साथ। 5:48 और 25 सेकंड। नसीम अजमेरी के लिखे इस गजल को आप सुन रहे थे पंकज दास की आवाज में। कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स और कुछ क्लासिक्स तो हम सुन ही रहे हैं और साथ में कुछ बातें भी। सदियों बाद ब्रिटेन ने जैन पांडुलिपियों को वापस लौटाई है। लंदन के एक संग्रहालय ने औपनिवेशिक शासन के दौरान जब्त की गई लगभग 2000 जैन पांडुलिपियों को लौटाने का सहमति जताई है। अधिकारियों ने इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक बहाली को सांस्कृतिक बहाली बताया, जबकि भारत के जैन समुदायों ने अपनी सदियों पुरानी विरासत की भावनात्मक वापसी

बहुत बड़ा जश्न भी मनाया। यह बहुत ही अच्छी बात है कि जो हमारे देश की जो पांडुलिपियाँ हैं वो बाहरी देश में जो चले गए एक ज़माने में वो वापस आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम एक और नगमे के साथ जिसे लिखा योगेश ने, आर डी बर्मन ने संगीतबद्ध किया, आवाज़ है किशोर कुमार की और फिल्म मंजिल। हंड्रेड पॉइंट वन एफ एम गोल खरा सोना के अंतर्गत कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स।

रिमझिम गिरे सावन। जी हाँ, मंजिल फिल्म से इस गीत को आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। और थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी आपको कि जैन पांडुलिपियों को वापस भारत को लौटा दिया गया है। प्रधानमंत्री के दौरान यात्रा के दौरान नेदरलैंड्स ने ऐतिहासिक 11वीं शताब्दी के अनाई मंगलम, जो जिसे हम लीडेन के तांबे के शिलालेख, भारत को लौटा दिए हैं, जो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतिपूर्ति है। सम्राट राजराजा चोल प्रथम के से संबंधित ये दुर्लभ चोल युग के शिलालेख एक शताब्दी से अधिक समय तक यूरोप में रखे गए थे और इन्हें भारत की समुद्री और सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण अभिलेख जो है माना जा रहा है। तो चलिए, इन बातों के साथ साथ एक और गीत की ओर हम बढ़ते हैं। 5:53 और 47 सेकंड आप जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में संचिता के साथ। मयूर पंख फिल्म से लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज। इस गीत को जिसने लिखा, उनके नाम तो हम सभी जानते हैं, शैलेंद्र साहब, और शंकर जयकिशन ने इसे संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम

0: 6:10 पर वापस आएंगे हम इसी कार्यक्रम को लेकर। बीच में रूबरू होते हैं खबरों की दुनिया से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जाँच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की

0: आकाशवाणी एट 90।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1।
2: चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड खरा सोना में आपके साथ हूं मैं संचिता। चलिए खबरों से रूबरू होने के बाद एक और खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको सुनाते हैं पाव भाजी की कहानी। हाँ, पाव भाजी तो हम सभी खाते हैं। हाँ, सिर्फ महाराष्ट्र के लोग ही नहीं बल्कि कोलकाता में भी पाव भाजी खाई जाते हैं। अशोक बड़ा पाव को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सैंडविचों में से 25वां स्थान मिला है। कैसे? और ये सब एक रेलवे स्टेशन के बाहर भूखे मिल मजदूरों को खाना खिलाने से शुरू हुआ था एक जमाने में। जी हाँ, सन 1966 की बात है। अशोक वैद्य ने दादर के रेलवे स्टेशन के बाहर एक छोटा सा खाने का ठेला शुरू किया। उनका लक्ष्य क्या था? कपड़ा मिल के जो श्रमिक थे, श्रमिकों के लिए कुछ ऐसा बनाना जो किफायती हो, पेट भरने वाला हो और आसानी से खाया जा सकता हो। उस समय अशोक पारंपरिक वड़ा और पोहा बेचते थे। उन्होंने आसपास झटपट भोजन की तलाश में रहने वाले मिल मजदूरों के बीच पाव बंस का चलन जो है तेजी से बढ़ते हुए देखा और इसीलिए उन्होंने कुछ सरल करने की कोशिश की। उन्होंने तले हुए आलू के वड़े को पाव के अंदर रखा, उसमें चटनी मिलाई और एक किफायती भोजन तैयार कर दिया जिसे लोग चलते फिरते खा सकते हैं। यह विचार रातों रात लोकप्रिय हो गया। देखते ही देखते सुबह, दोपहर, रात मजदूर

उनकी दुकान के बाहर कतार में खड़े रहने लगे और उनके आविष्कार की जो प्रतियां पूरे मुंबई में फैल गई। अशोक वैद्य का निधन 6 जून 1998 को 58 वर्ष की आयु में हो गया, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। उनके बेटे नरेंद्र

भारतीय बर्गर वड़ा पाव आज भी सभी का है, युवा और वृद्ध, अमीर और गरीब। शायद इसलिए हर साल 23 अगस्त, जी हाँ, को विश्व वड़ा पाव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये थी वड़ा पाव की कहानी। है बारिश का मौसम, हाँ बारिश में पकौड़े के साथ हम वड़ा पाव भी खा सकते हैं। अब मैं लालच तो नहीं दिलाना चाहती हूँ आपको, लेकिन गीत जरूर सुना सकती हूँ। कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स, चाय आप खुद बना लें, क्लासिक्स हम सुनाई देते हैं। आशा भोसले विनोद राठौड़ की है आवाज, फिल्म का नाम चांदनी। आनंद बख्शी ने गीत लिखे जिसे संगीत से सींचा शिव हरि ने।

0: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: सरकारी उद्यम और तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। आज परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत हम बात करेंगे स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में। एक सरकारी पहल है और इसे महिलाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2015 में शुरू किया गया था। यह योजना पात्र उधारकर्ताओं को 1 करोड़ रुपए तक का बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान करती है। इसका उद्योग विनिर्माण, सेवा और कृषि संबंधित क्षेत्रों में नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण प्रदान करके अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, जिससे समावेश, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। स्टैंड अप इंडिया परियोजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, एससी और एसटी श्रेणी के कम 1 उत्तरकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ तक के बैंक ऋण के साथ सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त परियोजना ये सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक बैंक शाखा विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए कम से कम 1 महिला उधारकर्ता को सुविधा प्रदान करे। गैर व्यक्तिगत उद्यमों के लिए ये आवश्यक है कि न्यूनतम 91% स्वामित्व और नियंत्रण हित किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास हो। इस योजना के तहत बैंक शाखाओं को कम से कम 1 एसटीएससी के उधारकर्ता और 1 महिला उधारकर्ता को सहायता प्रदान करना अनिवार्य है, जैसा कि कहा। और ये योजना 7 साल की पुनर्भुगतान अवधि और 18 महीने की स्थगन अवधि के साथ 10 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण प्रदान करती है। ये योजना नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए कार्यशील पूंजी सहित 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। प्रत्येक बैंक शाखा से औसतन 2 उद्यमशील उद्यमों को सहायता प्रदान करने की उपेक्षा की जाती है, 1 महिला उद्यमी के लिए तथा 1 एसटी एससी उद्यमी के लिए। क्रेडिट निकासी के लिए रुपे डेबिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे और ये योजना अन्य विभागों की मौजूदगी पहलों का पूरक होगी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, दलित भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल और अन्य क्षेत्र विशिष्ट संस्थानों की भागीदारी के साथ स्टैंड अप इंडिया पहल का नेतृत्व करेगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लिए स्टैंड अप कनेक्ट

केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बैंक उधारकर्ता के क्रेडिट इतिहास की निगरानी करेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि धन का उपयोग उचित रूप से किया जा रहा है तथा उसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया जा रहा है। स्टैंड अप इंडिया योजना में अभिसरण और अंतरक्षेत्रीय कुछ संबंध है। जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ था तो भारतीय माइक्रो क्रेडिट के ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 9100 ई रिक्शा वितरित किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य पैडल रिक्शा चालकों को ई रिक्शा मालिक बनने में मदद करना, इसका उद्देश्य उनकी आय को 3 गुना बढ़ाना था। अब बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना के पात्र कौन हो सकते हैं। पात्र आवेदकों में 18 वर्ष से अधिक आयु के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी शामिल हो सकते हैं। विनिर्माण सेवा या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड परियोजना शुरू करना चाहते हैं ऐसे उद्यमी हो। इस योजना का जो लक्ष्य है, कम से कम 18 वर्ष की आयु वाली SC ST जनजाति और महिला उद्यमी हो। इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले जो ऋण है उस ऋण के विशेष रूप से ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए ही उसका विनिर्माण सेवा, व्यापार या कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए ही प्रारंभिक प्रयासों को संदर्भित किया जाए। गैर व्यक्तिगत उद्यमों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर महिला उद्यमियों के पास शेयर धारिता में 91% की नियंत्रित हिस्सेदारी होनी चाहिए। उधारकर्ताओं पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों का कोई बकाया नहीं होनी चाहिए। इस योजना में 15% तक मार्जिन मनी की जो है अनुमति है, जिससे पात्र केंद्रीय या फिर राज्य योजनाओं के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। चाहे जो भी हो, उधारकर्ता को परियोजना लागत का न्यूनतम 10% योगदान देना ही होगा। स्टैंड अप इंडिया बहुत तरह से, हर तरह से लाभदायक है। स्टैंड अप इंडिया योजना बेरोजगारी कम करने के लिए नए उद्यमों को प्रेरित या प्रोत्साहित करने में, ये निवेशकों के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करता है जिससे कि विशेषज्ञ मार्गदर्शन, समय या फिर कानूनी ज्ञान उपलब्ध कर सकता है। ये योजना उद्यमियों को उनके व्यवसाय के प्रथम 2 वर्षों के दौरान सहायता प्रदान करती है तथा परामर्शदाताओं को निरंतर समर्थन प्रदान करती है। उधारकर्ताओं को 7 वर्षों की पुनर्भुगतान अवधि का लाभ मिलता है जिससे ऋण पुनर्भुगतान का तनाव जो है कम होता है। इस योजना का उद्देश्य कानूनी और परिचालन संबंधी बाधाओं सहित व्यावसायिक बाधाओं को दूर करना है। इसमें रोजगार सृजन और दलितों या फिर आदिवासियों और महिलाओं को सशक्त बनाने की क्षमता है। स्टैंड अप इंडिया पहल स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अन्य सरकारी पहलों को इंस्पायर करता है, प्रेरित करती है। ये भारत के जनसंख्यीय लाभांश को संरक्षित करने में योगदान देती है तथा बैंक खातों और तकनीकी ज्ञान तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको स्टैंड अप इंडिया में आवेदन करना है तो कैसे करेंगे। इस योजना के तहत सीधे स्टैंड अप इंडिया का पोर्टल है, वहां जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बैंक के माध्यम से भी किया जा सकता है। आप अपने निकटतम या नजदीकी किसी भी राष्ट्रीयकृत या फिर क्षेत्रीय बैंक जो है वहां जाए, उसके शाखा में पहुंचे और जाकर सीधा संपर्क कर सकते हैं। आवेदन के समय आमतौर पर दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पहचान प्रमाण के तौर पर आप वोटर आईडी, आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखा सकते हैं। निवास प्रमाण, जो पत्र परियोजना की जो विस्तृत रिपोर्ट है जिसे हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं।

0: SCST सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट, उद्यमियों का रजिस्ट्रेशन या साझेदारी विलेख भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके पास SCST का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इस योजना से संबंधित जो है आप पूरी जानकारी किसी भी निकटतम बैंक में जाकर भी ले सकते हैं। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात कर रहे थे स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में।
1: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

0: Akashvani at 90.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

100.1 FM गोल खरासोना के अंतर्गत कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स। अब बारी है कुछ जन्मदिन जिनका है, कुछ फिल्मी हस्तियां, जो खिलाड़ी, कुछ टीवी के से जुड़े लोगों की जन्मदिन का जिक्र करूं। फिलहाल 6:41 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में सांचता के साथ। शुरुआत करते हैं एकता कपूर, जिनका जन्म 7 जून 1975, एक प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन और फिल्म निर्माता है, हम सब जानते हैं। बालाजी टेलीफिल्म्स की संयुक्त प्रबंध निर्देशक और क्रिएटिव हेड है। उन्हें भारतीय टेलीविजन की क्वीन कहा जाता है, जिन्होंने छोटे पर्दे पर सीरियल सास भी कभी बहू थी से शुरुआत की, फिर कहानी घर घर की जैसे कुछ क्रांतिकारी धारावाहिक बनाए। इनका जन्म आज ही के दिन, परिवार एक दिग्गज अभिनेता परिवार से ये आती हैं। जितेंद्र इनके पिता हैं, शोभा कपूर माता, और इन्होंने मुंबई में रहकर ही अपनी पढ़ाई की। मात्र 15 से 19 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती जो असफलताओं के बाद उन्होंने वर्ष 2000 में जो सीरियल स्टार्ट किए, फिर उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक के बाद एक हिट सीरियल्स इनके नाम आता है। उनकी प्रोडक्शन कंपनी ने लव, सेक्स और धोखा, द डरी पिक्चर, रागिनी, एमएमएस, ड्रीम गर्ल जैसे सफल बॉलीवुड फिल्मों का निर्माण किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म की अगर बात करूं तो हाँ, ओटीटी में भी उन्होंने दुनिया में बहुत मुकाम हासिल किए। मनोरंजन जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया, और इसके अलावा उन्हें विभिन्न श्रेणियों में ढेरों इंडियन टेली अवार्ड्स से सम्मानित किए गए। मैं बात कर रही हूँ एकता कपूर की, जिनका आज जन्मदिन है। आज 7 जून है और आज ही के दिन 1981 को जन्मी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री, पड़ोस की लड़की इन्हें कहा जाता है, मशहूर इन्होंने इश्क विश्क से शुरुआत की थी 2003 में। फिर मैं हूं ना, विवाह जैसी हिट फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए व्यापक प्रसिद्धि हासिल की। मैं बात कर रही हूं अमृता राव की। इन्होंने कई पुरस्कार जीते और प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। मुंबई, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ और कोंकणी भाषा परिवार में ये बिलोंग करती हैं। पिता एक विज्ञापन एजेंसी के मालिक थे और उनकी जो छोटी बहन प्रतिका राव भी बहुत पॉपुलर है, अभिनेत्री हैं। अभिनय की करियर इन्होंने डेब्यू, जैसा कि मैंने कहा, 2002 में फिल्म अब के बरस से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड इनको नामांकन किया गया। अमृता को 2003 में आई रोमांटिक फिल्म इश्क विश्क में शाहिद कपूर के साथ अपनी भूमिका के लिए रातों रात स्टारडम मिल गई थी। उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म की मैं हूं ना, और फिर 2006 में आई थी फिल्म विवाह। उन्होंने श्याम बेनेगल की जो प्रशंसित व्यंग्यपूर्ण कॉमेडी कह सकते हैं, वेलकम टू सज्जनपुर में भी काम किया। अभिनय करके अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का

पुरस्कार भी हासिल हुआ। मैं बात कर रही थी अमृता राव की। हमारे देश के एक महान टेनिस खिलाड़ी का भी आज जन्मदिन है। 7 जून 1974 को इनका जन्म हुआ था। भारत के दिग्गज पूर्व टेनिस खिलाड़ी, ग्रैंड स्लम टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बने। युगल डबल्स और मिश्रित युगल में अपनी अभूतपूर्ण सफलता के लिए इन्हें हम लॉन टेनिस के इतिहास में महानतम खिलाड़ियों में गिनते हैं। महेश श्रीनिवास भूपति, 1974 7 जून मद्रास तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। 12 ग्रैंड स्लम खिताब जीता, जिसमें से 4 डबल्स हैं, 8 मिक्स डबल्स हैं। मिश्रित युगल यानी कि मिक्स डबल्स में भी करियर ग्रैंड स्लम इन्होंने जीता। महेश भूपति ने बहुत ही कम उम्र में टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने मिसिसिपी विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, लेकिन 1995 में पेशेवर खिलाड़ी बने। सिंगल्स में भी हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी और ऐतिहासिक सफलता डबल्स में ही मिली। पहला ग्रैंड स्लैम 1997 में जापान की रिकी हिराकी के साथ फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल उन्होंने खेला और जीता भी। इसके साथ ही ग्रैंड स्लैम जीतने वाले इतिहास के पहले भारतीय बने। लिएंडर पेस के साथ जोड़ी बनाई। लिएंडर पेस के साथ उनकी जो जोड़ी है, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है। इस जोड़ी ने 1999 में विंबलडन और फ्रेंच ओपन जीतकर दुनिया भर में तहलका मचा दिया। करियर ग्रैंड स्लैम की अगर बात करूं तो भूपति उन 8 खिलाड़ियों के विशेष समूह में शामिल है जिन्होंने मिश्रित युगल में करियर ग्रैंड स्लैम हासिल किया। 1999 अप्रैल में वे डबल्स में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने। उनके नाम कुल 12 ग्रैंड स्लैम खिताब, 4 मिक्स्ड और 8 मिश्रित, 4 युगल डबल्स और 8 मिश्रित युगल शामिल है। भारत सरकार द्वारा उन्हें देश के सर्वोच्च खेल सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा। टेनिस के से संन्यास लेने के बाद भी खेल से जुड़े रहे। उन्होंने ग्लोबल स्पोर्ट्स नामक एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से वो जुड़े हुए हैं और अभिनेत्री लारा दत्त के पति है। 2011 में इनकी शादी हुई। इसके अलावा एक और अभिनेत्री का आज जन्म है, बहुत पुरानी अभिनेत्री हम कह सकते हैं। 1935 7 जून में इनका जन्म हुआ। जी हाँ, आर पार 1954 में आई थी। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय किया। मैं बात कर रही हूं हिंदी और पंजाबी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री श्यामा की। श्यामा ने अपने 4 दशक लंबे करियर में तकरीबन 140 से अधिक फिल्मों में काम किया। आर पार की बात कर ही रही हूं तो चलिए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में एक गीत जिसे मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखा और ओपी नैयर ने इसे संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स 6:48 आप जुड़े हुए हैं संचिता के साथ।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।
1: 100.1 FM गोल्ड पर चाय और क्लासिक्स के साथ आप जुड़े हुए थे, आपके साथ थी मैं संचिता। और बस अब रुखसत होने का समय आ गया है, लेकिन फिर से जुड़ने का भी वक्त है। FM रेनबो पर लेकर आऊंगी यादों की बारात 7:02 पर। तब तक आपको छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत, मन्ना दे, आशा भोसले, बतिश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाज। बरसात की रात है फिल्म का नाम, साहिर ने लिखा गीत के बोल और इसे संगीत से सींचा रोशन ने। तब तक सुनते रहिए इस गीत को और अगले कार्यक्रम के साथ भी रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं पर समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच संबंध के लोगों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नगर पालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। सुश्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और गुड़ी को जल्द ही 5 हिमालयी शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बीच पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमतें में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली में 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपये है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लिबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, उसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इटली के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना जर्मनी के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। इससे पहले कल रूस की मिरा एंड्रीवा ने माजा च्वालिंस्का को

0: This is Akashwani. In the special series, 12 Years of the Modi Government, now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
1: Ye Akashwani hai. विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
2: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
3: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानती हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जाँच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम है। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है, और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े

पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं, आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है। अंग्रेजी में

0: करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे न केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है, तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप
1: देखिए। भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हो खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंक अप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास।
0: शायद कागज खो भी जाते हैं, हाँ, मिलते नहीं,
1: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंक अप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है, और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी QR कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था, आज ये करने की जरूरत नहीं है। आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है, आप QR कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहाँ तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
0: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
1: बिल्कुल,
0: और इसमें मेरा ख्याल है AI की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो AI और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
1: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा हमारे देश ने एक बहुत बड़ा AI इंडिया इम्पैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है, लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है
0: जी।
1: और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर

0: दराज के इलाके हैं जहां पहुंचने में बहुत कठिनाई है, जहां शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है, और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं, तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी
0: बिल्कुल
1: उपलब्धि है,
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में AI टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की, उसमें हमने AI ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया। उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो AI सपोर्टेड, AI ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहां पे AI कैसे मदद करता है कि AI टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, AI टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक CHO को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या AI की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है, और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है, और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी AI के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है, जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज जो है भारत में 1,70,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं, जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 1,82,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है, और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ENT की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर

0: कर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी। और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए। तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है। और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है, यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी,
0: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया। आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया, जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास हैं जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीबी और कोविड-19 का भी जिक्र किया, तो आज टीबी के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
0: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है। ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी के जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जांच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं।

0: हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ कोविड 19 की भी चर्चा करते हैं। कोविड 19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, कोविड 19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने ये तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए, और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो, जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब कोविड 19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से कोविड 19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है। और यहाँ तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है, और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है, और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है तो भारत, अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम 3रे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। US हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयाँ पहुँचती हैं जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं।

0: डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेज है। आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। एनसीडीज का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है, अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज़्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है। और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है। और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान, बीड़ी, मसाला, शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग, व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है, और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है। 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे, और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है। और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है। और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें, और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना, और साथ

0: साथ पौष्टिक आहार
1: बिना खर्च का तरीका है योग।
0: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी, आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन द स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on AIR. This program is also available on our YouTube channel News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुँचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गाँव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रेवा ने माया चालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331 0481। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन, पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani and I'm VC Pramod with the news at 9. The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Karsiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, the two leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their comprehensive strategic partnership. More from our correspondent.
6: During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields including political, defense and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and cultural domains and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. They also reaffirmed their commitment to closer cooperation and coordination in regional and multilateral forums. Dr. Jayashankar and Mr. Sugiono welcomed the upward and growing trajectory of bilateral relations. In his opening remarks, Dr. Jayashankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. He said India-Indonesia celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
5: West Bengal Women and Child Development and Social Welfare Minister Agnimitra Paul today chaired a high-level administrative review meeting at Siliguri. Discussions focused on municipal affairs, women and child development, social welfare, disaster management, sanitation, drainage, waste management, traffic regulation and the implementation of various government schemes. Later addressing the media, Mr. Paul said, Darjeeling, Mirik, Karsiong, Kalimpong and Siliguri will soon be developed as 5 Himalayan cities. She said Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal has expressed support for developing these towns, which is expected to boost tourism, trade, the tea industry and the regional economy as well as generate employment opportunities. Ms. Paul said strict measures will be taken to improve urban infrastructure and cleanliness. West Bengal is set to become the 36th state to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is the world's largest publicly funded health insurance scheme. The National Health Authority and the government of West Bengal will sign a memorandum of understanding tomorrow for the implementation of the ABPMJ in the state. The MOU will be signed in New Delhi in presence of Union Minister for Health and Family Welfare, J.P. Nadda, and West Bengal Chief Minister, Suvendu Adhikari. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh has said the Narendra Modi government has transformed India in the past 12 years into an aspirational nation driven by opportunity, innovation and self-belief. Speaking to media, Dr. Singh said governance reforms, technological democratization and citizen-centric policies have fundamentally changed the way people of the country view their future prospects. He said India's space economy, currently valued at nearly $9 billion, is expected to grow to about $45 billion over the next 7 to 8 years. He added that the startup ecosystem has expanded from around 400 startups in 2014 to more than 2.3 lakh at present, generating nearly 25 lakh jobs. Lok Sabha Speaker Om Birla today asserted that the vision of Viksit Bharat 2047 can only be realized through public participation, innovation, entrepreneurship and collective resolve. Addressing a conclave in New Delhi, Mr. Birla emphasized that entrepreneurship and nation building must progress hand in hand to ensure that the benefits of development reach every section of society. He noted that India's journey towards becoming a developed nation must be guided by inclusive growth, social responsibility and active citizen engagement. Highlighting the role of the youth in shaping the future, Mr. Birla stated that educated, skilled and technologically enabled young people constitute the greatest strength of Viksit Bharat 2047. He urged the younger generation to embrace innovation, artificial intelligence and emerging technologies to position India as a global leader. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at the rate AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The southwest monsoon has further advanced into some more parts of west central and entire northeast Bay of Bengal today. According to the India Meteorological Department, southwest monsoon also advanced into some more parts of northwest Bay of Bengal, entire Nagaland, Manipur, Mizoram and some parts of Tripura, Assam and Arunachal Pradesh today. It predicted heavy to very heavy rainfall with isolated at places over coastal Karnataka, interior Karnataka, Kerala, Mahi, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim tomorrow. Meanwhile, various parts of the national capital received light to moderate rainfall this evening. The rainfall brought relief to the residents of the city from the hot and humid weather. In Maharashtra, monsoon showers reached parts of Ratnagiri district today. Heavy rain accompanied by thunder and lightning was reported in Rajapur Taluka of the district this afternoon, while light showers were also recorded in Ratnagiri town and nearby areas. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis today said that the state government is closely monitoring rainfall patterns and taking all necessary steps to safeguard farmers' interests. Speaking to media in Nagpur, Mr. Fadnavis said, despite an overall forecast of 92% of normal rainfall this year, some districts in Marathwada, West Vidarbha, North Maharashtra and other drought-prone regions are also likely to receive deficient rainfall due to the impact of El Nino. He said the state government has been issuing timely advisories to farmers to help them cope with the evolving weather situation. Foreign portfolio investors, FPIs, offloaded Indian equities worth 42,927 crore rupees in the first week of June and remained net sellers during all five trading sessions for the week. With this, the total FPI outflows from the equity market have crossed 2.67 lakh crore rupees so far this year, according to depository data. The continued selling by foreign investors is largely attributed to ongoing tensions in West Asia, which have now reached the 100-day mark as the United States and Iran have yet to reach a peace agreement despite multiple rounds of negotiations. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Major Abhilasha Barak on being conferred the UN Military Gender Advocate of the Year award. In a social media post, he said the honour recognises Major Barak's exemplary service and India's long-standing contribution to United Nations peacekeeping efforts. Mr. Modi said her achievement is an inspiration to countless young Indians, especially the nation's daughters, who aspire to serve the country and humanity. Major Barak is currently serving with the UN peacekeeping mission in Lebanon as an engagement team commander and gender focal point. She received the award from UN Secretary General Antonio Guterres at a ceremony in New York on Friday. Today marks the 100th day of the conflict between the United States and Iran, a confrontation that has steadily expanded beyond its original front lines to affect key flashpoints across the Gulf and wider West Asia. What began with US and Israeli strikes on Iran in late February has evolved into a broader regional crisis involving missile exchanges, threats to maritime traffic in the Strait of Hormuz, and renewed tensions in Lebanon, placing increasing pressure on efforts to preserve a fragile ceasefire. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC Plus, has agreed to raise oil production in July as the United States and Iran struggle to reach an agreement to end the war. According to the cartel's statement released after its virtual meeting today, the seven OPEC Plus countries, which include Saudi Arabia, Russia, Algeria, Iraq, Kazakhstan, Kuwait, and Oman, have agreed to increase oil output targets by about 1,88,000 barrels per day next month. This is the fourth increase amid the West Asia crisis. The war, which began after US-Israeli strikes on Iran on the 28th of February this year, has cut oil flows through the Strait of Hormuz, creating the world's biggest ever supply crisis. US President Donald Trump said he will not unfreeze Iranian assets or lift sanctions before a peace agreement is reached with Tehran. In an interview with a news channel, Mr. Trump said such measures would only be considered after a deal is finalized. Commenting on Iran's nuclear program, he said that if an agreement is reached with Iran, the United States would oversee the removal and destruction of Iran's nuclear-related equipment.
7: If we make a deal, now we're friendly, we'll all go together, it'll be our equipment, we'll take it out and destroy it, whether it's on site or whether we take it off site. Well, that will require we will have a deal, we'll be friendly. In other words, we will have made a deal and we will be at peace and we will go with them or without them, but we won't have people shooting at us, okay? Now, if we don't make a deal, then we're going to take them out militarily very harshly.
5: Indian wrestlers continued their impressive run at the Ulaanbaatar Open in Mongolia today, winning 2 gold and 2 bronze medals in the men's freestyle category. Deepak clinched the gold medal in the 61-kilogram category, defeating Kazakhstan's Asil Aytekin 6-0 in the final. Dinesh struck gold, beating Kazakhstan's Yedige Kasimbev 2-0 in the 125-kilogram final. Meanwhile, Mohit Kumar secured a bronze medal in the 65-kilogram category after registering a commanding 17-6 victory over Kazakhstan's Ozimzan Dastanbek. In the 97-kilogram category, Vicky bagged bronze, defeating Mongolia's Ghangkhuya Ganbatar 4-0. In cricket, Afghanistan were 113 for 5 in their first innings at stumps on day 2 of the one-off test against India in New Chandigarh, trailing by 451 runs. Rehmat Shah remained unbeaten on 43 at the end of play. For India, debutant Manav Sutar picked up 3 wickets, while fast bowler Prasidh Krishna claimed 2. Earlier in the day, India declared their first innings at a commanding 564 for 8. Captain Shubman Gill led the charge with 126, while KL Rahul struck 100. Rishabh Pant and Sai Sudarshan contributed 81 runs each, and Washington Sundar remained unbeaten on 52. For Afghanistan, Salim Safi was the standout bowler, taking 6 wickets. In French Open tennis, men's single title clashes underway between Germany's Alexander Zverev and Italy's Flavio Cobolli at the Roland Garros Stadium. Second seed Zverev is playing 4th Grand Slam final of his career, while 10th seed Cobolli is featuring in his first Grand Slam final. Both players are chasing their maiden Grand Slam title. The Andhra Pradesh government is launched the Yogandhra 2026, a statewide campaign aimed at promoting yoga and healthy living ahead of the International Yoga Day. The 14-day program will culminate on 21st of June with a grand International Yoga Day celebration in Amravati, where thousands of participants are expected to perform yoga together. The campaign seeks to encourage widespread public participation and raise awareness about the benefits of yoga. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Indonesia hold joint commission meeting in New Delhi, discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. And that's all in the news at 9. Good night.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीति भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगी ओनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में

लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: কিন্তু আমি পেশায় একজন ইলেকট্রিশিয়ান ও রেডিও মেকানিক। রেডিওর প্রতি আমার নিজের একটা অবসেশন আছে। নিজের কাছে শতাধিক রেডিও সংগ্রহে আছে এবং পুরনো রেডিও রিপেয়ার করি, এই নিয়েই চলছে দিব্যি, যতদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় পুরনোকে। যখন একটা 50 বছর আগের রেডিওকে নতুন করে সারিয়ে তুলে বাজানো সম্ভব হয়, তার যে কী আনন্দ সেটা বলে বোঝানো সম্ভব না। নিজের মজুরির থেকেও বড় সেই লোকের মুখে হাসি যে আমাকে সেটা সারাতে দিয়েছিল। একেবারেই তাই, খুব সুন্দর। এবং দেবাঞ্জন লিখছেন যে আপনাদেরই অনুষ্ঠান শুনছি, রেডিওর ভিডিও দিয়েছেন একটা, খুব সুন্দর সেটা। বেশ, টেলিফোনে আমাদের আর কি যাওয়ার সময় রয়েছে দেখে আজকে সকলের মেসেজ সেই স্কুলের বাইরে পাওয়া ঝাল লজেন্স, সেই টোপাকুল, আমরা বলতাম এক ধরনের মশলা থাকতো, সেটাকে বলা হতো কারেন্ট, এই সমস্তটা নিয়েই সেই পুরনো দিনে, ক্যাসেটের দিনে, চিঠির দিনে, ওই নারকেল নাড়ু মোয়ার দিনে আমরা ফিরে গেলাম বোধহয়। আর এই যে যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের অনুষ্ঠান শুনছেন, একেবারে রাত 8টা থেকে শুনছেন, কেউ কেউ 8টার অনুষ্ঠান মিস করে গেছেন, 9:30 থেকে শুনছেন, সকলের মেসেজ এসছে আমার কাছে এবং সকলে বলছেন সেই কথা। এত ভালো লাগছে যে আজকে সকলের স্মৃতির সঙ্গে সকলের স্মৃতি মিশে যাচ্ছে, জড়িয়ে যাচ্ছে, সকলেই রিলেট করতে পারছেন। সময় একদম নেই, কে বলছেন জেনে নেব। হ্যালো,
1: আমার নাম জয়দেব ব্যানার্জি।
0: হ্যাঁ বলুন। কিন্তু হ্যাঁ
1: বলছি, আমি অ্যাকচুয়ালি বড় মাঠে থাকতাম, এখন আমি রিসায় আছি। আমি যেটা বলতে চাইছি, পুরোনো দিনের গান বলা হয়।
0: হ্যাঁ একেবারেই তাই, পুরোনো দিনের গান তো নিশ্চয়ই ভীষণ ভীষণ আমরা, কিন্তু আর যে বলার সময় নেই, একেবারে ঘড়ির কাঁটা বলছে যে আমরা 12টা ছোব এবার। খুব ভালো লাগলো আপনাকে একদম শেষ মুহূর্তে ফোনে পেয়ে, আর সকলকে জানাই শুভরাত্রি, সকলে ভালো থাকবেন। যাদের সঙ্গে কথা বলা হলো না তাদের সঙ্গে কথা হবে নিশ্চয়ই আগামী দিনে, ভালো থাকবেন সকলে।
2: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মোহাম্মদ জুবের। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कालिम्पोंग,

और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने यह बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल अताकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दक्षिण पश्चिम मानसून कल पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।